0: Hi, this is the Bobcat on YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: धोखा धड़ी चेतावनी, अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MAF. ए, कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. ए, कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए अनुरोध का उत्तर न दे. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
3: As a veteran of the United States military, I can finally get the opportunity to enjoy special events, things that we couldn't afford, thanks to VetTix.
4: Every empty seat at a concert, a game, or a play is a missed opportunity to say thanks to a veteran and service member. We can give our veterans a special event where they too can create their own cherished memories. Visit vettix.org. Find out how you can make a difference in a veteran's life.
5: Eddie! Hi everyone, this is Tony Ann Semple, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.